बहुत सारे सीनियर्स कहते हैं, बेटा आप वो काम कर रही हो जो इस सोसाइटी में आज से पहले किसी ने नहीं किया, तो आप अपना इदारा क्यों नहीं बुलाती। मैंने कहा सर जी, मुझे पर्सनली ना ये चीज़ें पसंद नहीं है, मैं सिर्फ अल्लाह के साथ रब्ता रखना चाहती हूँ और मैं इन मामलों में नहीं पढ़ना चाहती। कहते नहीं बेटा आप करो, आपकी थॉट बिल्कुल अलग है। वहाँ पे मैंने बैठे बैठे ना मेरे मुंह से निकला जन्नत। क्यों? क्योंकि मैं अपनी कम्युनिटी के लिए जन्नत बनाना चाहती हूँ। मैं सेशन देती हूँ डिफरेंट जगहों पे जाके, जैसे स्कूल्स हो गए, इदारे हो गए, वहाँ पे जाके प्रॉपर मैं अवेयरनेस देती हूँ इन चीज़ों के बारे में कि मैंने लोगों के क्वेश्चन आंसर से झुकना नहीं है, उठ के खड़े होने और उनका जवाब देना है। ये था कि वुमन की एक्सेसिबिलिटी का इशू, वुमन के हकूक का इशू, वुमन की जो पर्सनल लाइफ होती है उसमें उनको क्या क्या ज़रूरियात होती है। अगर किसी के घर में कोई इशू बनता है तो वो पर्सनली भी मुझे मिलते हैं और मैं उनको सॉल्व करती हूँ।

0: If the message was even stronger, what change can it bring? And then, thankfully, LaSalle accepted me. It is one of the three performing arts schools in Singapore. I found my voice in theatre.
1: मैंने अपनी सोसाइटी में बहुत सारी हर्डल को देखा. एक्सेसिबिलिटी एक मेजर इशू है. अगर एक जगह पे मैं जॉब करने जा रही हूँ, वो मुझे क्यों नहीं रखते? क्योंकि उनका ऑफिस एक्सेसिबल नहीं होता. मेरा नाम आशा शौकत है. मेरा ताल्लुक लाहौर पाकिस्तान से है और आई एम अ सोशल एक्टिविस्ट. बेसिकली जो मेरी डिसेबिलिटी है ना, वो कहलाई जाती है माइनर सीपी. मेरी डे बाई डे यही जंग होती है. जहाँ मैं जाऊँगी, जहाँ कोई इशू मुझे नज़र आएगा, ज़रूर जब पॉइंट्स हैं जहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रैंक बनवा लिया. ये सिर्फ मेरा काम नहीं है, ये हम सब का काम है.
2: I think sport has always been in me. But I think I went a bit far with netball. I played for the national team for the World Youth Team Cup in Canberra in 1988. Supposed to continue with the Asian Games, but I got my injury. My name is Yohanis Adnan. I'm from Malaysia. I'm 56 years old and I'm currently working as a lecturer in the sports faculty here in Malaysia, Kuala Lumpur. In 1990, I got my spinal cord injury. Test after test after test, and I say, okay, why I'm not getting back my motor control. I was still young, 22. To me, it's not the end of everything, because it's basically a new chapter.

बहुत सारे सीनियर्स कहते हैं, बेटा आप वो काम कर रही हो जो इस सोसाइटी में आज से पहले किसी ने नहीं किया, तो आप अपने इदारा क्यों नहीं बुलाती। मैंने कहा सर जी, मुझे पर्सनली ना ये चीज़ें पसंद नहीं है, मैं सिर्फ अल्लाह के साथ रब्ता रखना चाहती हूँ और मैं इन मामलों में नहीं पढ़ना चाहती। कहते नहीं बेटा, आप करो, आपकी थॉट बिल्कुल अलग है। वहाँ पे मैंने बैठे बैठे ना मेरे मुंह से निकला जन्नत। क्यों? क्योंकि मैं अपनी कम्युनिटी के लिए जन्नत बनाना चाहती हूँ। मैं सेशन देती हूँ डिफरेंट जगहों पे जाके, जैसे स्कूल्स हो गए, इदारे हो गए, वहाँ पे जाके प्रॉपर मैं अवेयरनेस देती हूँ इन चीज़ों के बारे में कि मैंने लोगों के क्वेश्चन आंसर से झुकना नहीं है, उठ के खड़े होने और उनका जवाब देना। तो ये था कि वुमन की एक्सेसिबिलिटी का इशू, वुमन के हकूक का इशू, वुमन की जो पर्सनल लाइफ होती है उसमें उनको क्या क्या ज़रूरियात होती है। अगर किसी के घर में कोई इशू बनता है तो वो पर्सनली भी मुझे मिलते हैं और मैं उनको सॉल्व करती हूँ।

आज से पहले किसी ने नहीं किया, तो आप अपना इदारा क्यों नहीं बुलाती? मैंने कहा सर जी, मुझे पर्सनली ना ये चीज़ें पसंद नहीं है, मैं सिर्फ अल्लाह के साथ रब्ता रखना चाहती हूँ और मैं इन मामलों में नहीं पढ़ना चाहती। कहते नहीं बेटा, आप करो, आपकी थॉट बिल्कुल अलग है। वहाँ पे मैंने बैठे बैठे ना मेरे मुंह से निकला जन्नत। क्यों? क्योंकि मैं अपनी कम्युनिटी के लिए जन्नत बनाना चाहती हूँ। मैं सेशन देती हूँ डिफरेंट जगहों पे जाके, जैसे स्कूल्स हो गए, इदारे हो गए, वहाँ पे जाके प्रॉपर मैं अवेयरनेस देती हूँ इन चीज़ों के बारे में कि मैंने लोगों के क्वेश्चन आंसर से झुकना नहीं है, उठ के खड़े होने और उनका जवाब देना है। ये था कि वुमन की एक्सेसिबिलिटी का इशू, वुमन के हकूक का इशू, वुमन की जो पर्सनल लाइफ होती है उसमें उनको क्या क्या ज़रूरियात होती है। अगर किसी के घर में कोई इशू बनता है तो वो पर्सनली भी मुझे मिलते हैं और मैं उनको सॉल्व करती हूँ।

0: पर उठाया है। ये खुद पे फखर है और मुझे पता है कि मैं जो कर रही हूँ वो बेस्ट है।
1: You have to throw away the thoughts that you cannot do things on your own.
2: I deserve respect, same as any other person.

बहुत सारे सीनियर्स कहते हैं, बेटा आप वो काम कर रही हो जो इस सोसाइटी में आज से पहले किसी ने नहीं किया, तो आप अपने इदारा क्यों नहीं बुलाती। मैंने कहा सर जी, मुझे पर्सनली ना ये चीज़ें पसंद नहीं है, मैं सिर्फ अल्लाह के साथ रब्ता रखना चाहती हूँ और मैं इन मामलों में नहीं पढ़ना चाहती। कहते नहीं बेटा, आप करो, आपकी थॉट बिल्कुल अलग है।

दादे हो गए वहां पे जाके प्रॉपर मैं अवेयरनेस देती हूँ इन चीजों के बारे में कि मैंने लोगों के क्वेश्चन आंसर से झुकना नहीं है, उठ के खड़े होने और उनका जवाब देना। तो ये था कि वुमन की एक्सेसिबिलिटी का इशू, वुमन के हकूक का इशू, वुमन की जो पर्सनल लाइफ होती है उसमें उनको क्या क्या ज़रूरियात होती है। अगर किसी के घर में कोई इशू बनता है तो वो पर्सनली भी मुझे मिलते हैं और मैं उनको सॉल्व करती हूँ।

0: barrier-free space for everyone.
1: दारा कायम करके जाऊं जहां के सिर्फ स्पेशल वुमेन को रखा जाए, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान में कोई ऐसा इदारा नहीं है जहां पे वुमेन विद डिसेबिलिटी को रखा जाए। ये वो इदारा हो जहां पे उनको एजुकेशन, उनको कुरान और उनको स्किल्स दिया जाए, ताकि वो एम्पावर हो और कल को वो लोगों को कमाना बताएं और लोगों को खिला सके, क्योंकि हमने मांगने वाला नहीं बनाना, हमने देने वाला बनाना है।